किसी के घर ना होए। जो मात पिता की, अरे मात पिता की इज्जत को, देसी अरे देसी

बदला बेटा, तेरे पाँव पे लेटा मैं अपनी जान पे खेलूं, कहीं फांसी न ले लूं, मेरी घर हुई न शादी, तू कैसे बनेगी दादी, तू कैसे बनेगी दादी, रहम का डाल दे पल्ला, प्यार का मार दे हल्ला, मुझे सेहरे बंधवाओ, मुझे फेरे दिलवाओ, मेरा पत्ता कटवाओ।

0: करा
1: जल्दी जल्दी
0: मर पुतरा
1: फांसी का नहीं
0: घर पुतर
1: लुट जाए
0: घर पुतर
1: जो करता है तो
0: घर पुतर जो करता है।

0: देशहिताच्या आव्हानाला सकारात्मक प्रतिसाद अडावतकर ज्वेलर्स।
1: आता योग्य वेळ सोन्याचं नवं करण्याची।
0: एक्सचेंज करते वेळी तुमच्या जुन्या सोन्याची व्हॅल्यू 1% वाढवून मिळेल
1: आणि मजुरीत 50% सूट।
0: तुमचं जुनं सोनं आहे भारताची नवी ताकद।
1: विश्वास नाशिककरांचा।
0: अडावतकर ज्वेलर्स, अगोरा कॉम्प्लेक्स, कॅनडा।
2: वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कार्यक्रमात आता ऐकूयात राम कदम यांच्या संगीताने सजलेलं सुमन कल्याणपूर यांच्या आवाजातलं ग. दि. माडगुळकर यांचं गीत।

0: स्लॉट घेण्याचा करताय विचार, आता होणार स्वप्न साकार. क्रेडाई नाशिक मेट्रो आयोजित नाशिकच्या इतिहासातील पहिला सर्वात मोठा क्रेडाई प्लॉट एक्सपो 2026. एन ए रेसिडेन्शियल प्लॉट, एन ए कमर्शियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल प्लॉट, फार्म हाउस प्लॉट अँड विलास, एग्रीकल्चरल लँड चे भरपूर पर्याय. नक्की भेट द्या 13 व 14 जून सकाळी 10:30 ते 8:30 मनोहर गार्डन, ट्रीट हॉटेल, गोविंद नगर, नाशिक. 788-789.
1: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी है जहाँ मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ.
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: कार्यक्रमात हे गीत ऐकूयात डॉक्टर वसंत अवसरे यांचं आशा भोसले आणि सुधीर फडके यांच्या स्वरात. गीताला संगीत दिलं आहे वसंत पवार यांनी आणि हे गीत ऐकूयात अवघाचे संसार या चित्रपटामधलं.

पहिला सर्वात मोठा क्रेडाई प्लॉट एक्सपो 2026 एन ए रेसिडेंशियल प्लॉट्स, एन ए कमर्शियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, फार्म हाउस प्लॉट्स अँड विलास, एग्रीकल्चरल लँड से भरपूर पर्याय. नक्की भेट द्या 13 व 14 जून सकाळी 10:30 ते 8:30 मनोहर गार्डन ट्रीट हॉटेल गोविंद नगर नाशिक 788-789-8901.

0: जवाब। अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा।
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
2: अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
3: क्या?

आशा, पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पल कुएं छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे।

0: बारिश होने वाली है।
1: तो क्या होगा, दिल के अंदर इतनी आग भड़क रही है कि ये बारिश तो क्या, आसमान भी फट पड़े तो भी बुझा नहीं सकता।
0: सुमति, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ।
1: कोई जरूरत नहीं, अब मेरे दिल की आग आपके खुफिया शब्दों की रेत ठंडा नहीं कर सकती। दोष मेरा था जो गरीबी के पुल को पार करके अमेरिकी किनारे तक पहुंचना चाहती थी। मैं नादान थी, मगर आपने इशारा कर दिया होता कि ये कोशिश मत करो, इस कोशिश का अंजाम मौत है, बर्बादी है।
0: सुमति, मेरे जख्मों में नमक न छिड़काओ।
1: छोड़ दीजिए, मुझे छूकर कहीं आपके हाथ मैले न हो जाए।
0: क्या कह रही हो तुम, तुम्हें छोड़ने से पहले दुनिया न छोड़ दूंगा।
1: अरुण बाबू, आज तक गरीबों की मोहब्बत दीवारों ही में चुनवाई गई है। आपकी दुनिया बहुत बड़ी है, मेरी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा दिल है और वो भी टूट चुके हैं।
2: सुमति, कुछ तो ख्याल करो, इतनी रात गई है, तमाशा किसने देख लिया तो रही से इज्जत भी मट्टी में मिल जाएगी। जाओ घर जाओ। डॉक्टर साहब, आप बड़े लोग हैं, लेकिन एक तरह से मैं आपकी माँ की बराबर हूँ। इज्जत में न सही, उम्र में तो हूँ। आप अगर किसी गरीब का भला चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सुमति को भूल जाएं, और सुमति आप अपने प्यार के लिए माँ के प्यार से कुर्बान न दीजिए। बच्चों की शादी ब्याह पर माँ बाप का अधिकार होता है, जाइए उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। बारिश हो रही है, भीग जाओगे। माफ करना, नाम ले लीजिए। डॉक्टर साहब ठहरिए, मैं आपके लिए छाता ले आती हूँ।
0: जी नहीं, मेरी माँ ने मेरे शरीर में इतनी शक्ति दे रखी है कि ये बारिश तो क्या, बड़े बड़े तूफानों को भी सह सकता है।

0: वाह वाह वाह वाह। परवरी ये कौन सी ठुमरी है?
1: ये स्कॉटलैंड की ठुमरी।
0: स्कॉटलैंड की?
1: ये दो ही चीजें तो स्कॉटलैंड की मशहूर है, या ठुमरी या ठर्रा।
0: नशा आ गया। लेकिन मास्टर जी ये ठुमरी है या ठर्रा?
1: ये ठर।
2: चमकाने जी
1: ठुमरी चालू करता हूँ सेठ जी।
0: चलो नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं
1: सेठ जी, आप जरा ठंडे हो जाइए सेठ जी।